0: freezing.
1: What's good? You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. It's Exile.
2: Women now make up 37% of the workforce, changing their role forever.
3: Harvard Medical School has now opened its doors to new female applicants.
4: The first woman is now in space.
5: The majority of last year's doctorate degrees were earned by women.
6: We've come so far, but our news is changing for the worse. More women die from heart disease and stroke than men, even though it can be prevented. Make a change at GoRedForWomen.org today. Brought to you by the Ad Council and the American Heart Association's Go Red for Women.
7: Share your message with YC Radio. Give your department, program, event, or student activity an additional voice with a YC Radio public service announcement, PSA. Airing a PSA on YC Radio is a simple and effective way to complement your existing outreach efforts while expanding your message to students, faculty, staff, and listeners both on and off campus. Whether you're promoting an upcoming event, recruiting volunteers, highlighting a campus service, or sharing important information, we'll help you create a clear, professional PSA that gets your message heard. Creating a PSA is quick, easy, and free for your college departments, student organizations, faculty, and staff. For more information or to get started, contact 718-262-5293. Promote your event. Share your message. Reach the York College community with YC Radio. Visit ycradio.org, the voice of today's generation.
8: धोखा धड़ी चेतावनी, अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MAF. ए, कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MAF. ए, कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF ए अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
9: थैंक यू फॉर लिसनिंग टू YCRadio.org, द वॉइस ऑफ टुडेज जनरेशन.
10: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
11: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.